0: ਵਰਕਰਸ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਦਾ ਕਾਲ 0491-999-555 ਗਿੱਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾ ਲਾਗੂ
1: ਰੈਡੀ ਸੈਟ ਗੋ ਚੈਸਟਨ ਫੋਰਡ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰਡ ਰੇਂਜਰ ਰੇਂਜਰ ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ ਐਵਰੇਸਟ ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਮਸਟੈਂਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਡੈਮੋ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀ ਓਨਡ ਵਹੀਕਲਸ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੀਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਟਿਮ ਫੋਰਬਸ ਜਾਂ ਕੋਰੀ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਚੈਸਟਨ ਫੋਰਡ ਰੈਡੀ ਸੈਟ Ford.
2: Wow, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मैनु भी दस दे सीक्रेट
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट गोल्ड लीफ डेयरी .com
4: मेरे नाल ता कुछ खेड़ता ही नहीं सब खोल दी लंग जंदे ने
5: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोस पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नु वेखण दी कहानी कणकां दे ओले
6: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी
5: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी तानिया किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार
4: हुण दस मैनु कणकां दे ओले
5: Releasing on 31st July.
4: दसो
7: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
8: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
7: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
8: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
0: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स एटीओ डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स
9: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते
10: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੋਮਾਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया,
2: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 04105305030
2: या 9077993
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077973।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
0: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332802552 ते 04332802552 ते।
4: मेरे नाल तो कुछ खेड़ता ही नहीं, सब खोल दी लंग जंदे ने।
5: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोज पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नु वेखण दी कहानी कणकां दे ओले।
6: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी।
5: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
4: हुण दसो मैनु कणकां दे ओले कौन।
5: रिलीजिंग ऑन 31st July।
4: दसो।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कौनी नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford।
7: बलजीत, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਰੀ ਵੇਖਣ ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ ਚਲੀਏ।
8: ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀਨੋਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
7: ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈਂਡੀਨੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਲਰੀ ਵੀ। ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ, 99 Main Road ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 Lonsdale Street, ਡੈਂਡੀਨੋਗ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 04992525345 ਤੇ।
0: ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੈਨਿਟੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਆ ਗਿਆ ZJ ਸਟੋਨ ਮੈਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇਕਦਮ ਕਲਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਟੋਨ ਬੈਂਚ ਟੌਪਸ ਫਾਰ ਕਿਚਨ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲਾਂਡਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਗੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 04100450555 ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 104 Collins Road, ਮਿਲਟਨ। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

मैं तुहानू एक गल दस दिना, देखी नहीं छोड़ो, सुनी जाओ, क्योंकि अगला गाना जिहड़ा है ओह अरनास ते अरमान गिल दा आया लॉटरी। सो सुनते हैं कि कहे जी लगी है लॉटरी इस बार। तो प्रोग्राम एक डीप टॉक शो दे लई 5 बजे तक जुड़े रहो। हाँ जे मेलबर्न स्टूडियो तो है, तो फिर मेलबर्न का स्टूडियो स्विच करके सिडनी वाले पासे आ जाओ।

0: 31 July.
1: दसो
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: 31st July.
1: Dasso.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: वो आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: हां जी हां जी, ओए

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: बता दे मानसल इमिग्रेशन वाले दा।
1: हाँ जी अपॉइंटमेंट बुक करवाओ ले कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरिस पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: वेलकम बैक जी, डीप टॉक शो दे विच तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत। ब्रेक ते इस हिस्से दे विच हुण गल साइंस दी वी कर लईए, इधर उधर दियां गल्लां तां होईगियां। डॉक्टर संदीप कौर जी साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद हैं। संदीप जी वेलकम बैक।
2: थैंक यू जी।
1: ठीक है, वो हिस्ट्री दे हवाले दे नाल भी समझ गए, सारा कुछ ठीक है। बट जिदा आप पिछले सैगमेंट दे विच गल जिथे सवाल छड़ के गए, मेडिटेशन जिहड़ी माइंडफुलनेस या होर भी जिन्नियां भी दिमाग दे नाल जुड़ियां होईयां कमियां या विकार या डिसऑर्डर्स हैगे ने, उहदे विच मेडिटेशन जोड़ दिता जांदा है कि ऐदा करो।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
3: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
4: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने
5: हुन टेंशन छड्डो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट
4: फिर लवाइए किथों
5: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी
4: आज ही सन करंट नु कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते
6: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available. आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service. Chadston Ford, ready, set. Ford.
7: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ थोड़ा कोई हल करिए
4: सोना चाहिदा
0: भरोसा चाहिदा
4: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
8: Smith's Lane by Molekvich अपने भविख की शुरुआत करो हुणे कदम चुको अते Smith's Lane दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वालों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है अजिहे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है
9: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
10: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू PR दी राह भी विखाई इन्ना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
9: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
10: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
11: मेरे नाल ता कोई खेड़ता ही नहीं सब खोल दी लग जंदे ने
12: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोज पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नु वेखण दी कहानी कणकां दे ओले
13: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले
12: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी तानिया किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार
14: हुण दस्सो मैनू कणकां दे ओले कौन
12: रिलीजिंग ऑन 31 जुलाई
14: दस्सो

0: ਕੈਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ।
1: सिर्फ फिल्म ही नहीं, यह है पंजाब की सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
0: जो जोकर तख्त पे बैठा तो वो राजा नहीं बनता, वो पूरे राज में सर्कस बना लेता है।
1: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते और कई साथी कलाकार। 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
2: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते 04332802522
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते लै सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी ले नंबर लिख लो 04301231394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
2: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने
3: हुन टेंशन छड्डो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट
2: फिर लवाइए कित्थों
3: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 04060212646 ते बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स एटीओ डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स

0: ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ Mustang, brand new demo ਤੇ quality pre-owned vehicles, trade-in ਅਤੇ finance options ਵੀ available। ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Ford ਦਾ test drive ਕਰੋ, business fleet ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, vehicle experts, Tim Forbes ਜਾਂ Corey ਨਾਲ, radio ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
1: Wow, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ डेरी .com।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। Orbit Homes अपने इरादे

0: मंथ प्राइस लॉक। आज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332802552 ते
1: 04332582
2: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।
3: अटेंशन ट्रैवलर्स, The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या अज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।

0: is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपनी हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे।
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 Grace Way, Revan Hall।
3: हां जी

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
2: हाँ जी रेडियो
3: मेनू चंगी तरह पता है मेरे बारे ये दुनिया बहुत बुरा भला बोलती है पर तू ना डर मैं तेनू बदनाम नहीं होन दिंदा।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया,
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।

अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332802552 ते 04332802552 ते

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी रेडियो
3: मुंडा भेजना गवा के कोहे नूर वर्ग
1: bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी रेडियो
3: मुंडा भेजना गवा

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान 0433-280-252 0433-280-252 ते
3: हां जी हां

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: हाँ जी हाँ जी

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर चलिए?
0: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
2: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट, सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45। We'll be right back.

0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
1: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
2: हां जी रेडियो

जाने मन कोई, मनै सुरत होवे मन बुद्ध, मनै सगल पवन की सुध, मनै मोचो टाने खा, मनै जाम कै साथ न जाय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मनै

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सोए कावार कर कर वेख सिरजनहार नानक सचे की साची कार आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होए लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए तरह पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै फीस आखन जोर चुपै नहीं जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मर न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे कार्त कड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद मनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै कार्त कड़िए बहुत अनूप कां किया गल्ला कथिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़िए सुरां सिदा की सुध

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्रीमुख वागपात सही दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात नहीं जाय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्वे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अभरणे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व द्याले नमो सर्व पाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं

है, निर्लंभ है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अजूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अभ्रम है, अजीत है, अबीत है, अबाह है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रियांक प्रिया छंद नमो सर्वमान।

अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र पाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा

अय है, अभीत है, अभय है, प्रभु है, अजू है, अदेश है, अवेश है, प्रियांग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ती निदाने नमस्तुं निनाथे नमस्तुं परमाते नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अभंजे नमस्तुं अकाले नमस्तुं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साये नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्वतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्वोत्कृष्टंग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्म पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानुताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्य सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार महमा अपार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास।

कालानकान अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदि श्रेतरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतं कृति है के छत

त्रंग छत्री है के ब्रह्म स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रम बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज रहीम है के कर्म करीम है के सर्वं कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोक है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिया के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदमदाम गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चातरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशा रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईस है समस्त अधीश है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमीक नुमा है करीमल कुमाल है के जुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

मुदाम हर बार अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ धर्म अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जगजानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है भाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते समस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए श्राव समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे पारी पजान कपूत नात बिचारे इते पै तो कांपे अंधकुना के पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पवेख पवान के पुवत कौन गने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जा

0: बोलिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ऐसे बैस बतायो साच को सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पुत्रो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचार।

आ देव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तोय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव तई पूपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फूर राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे त्योहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार त्योहार है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहा।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

माया अगन सब को जई करता खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

0: धन गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे हे नानक जो गुर सेवहि अपना जेड़े मनुख अपने गुरु नूं सेवंदे ने सेवा करदे ने गुर कै ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्ज रास सेवा करत होए निहकामी तिस को होत प्राप्त स्वामी। कहिंदे जेड़े गुरु दी सेवा करदे आ इक मिक हो जांदे ने सेवा करके महाराज कहिंदे इहो जी सेवा करन वालियां तों हौं तिन बलिहार है जाओ मैं कुर्बान जाना हां सदके जाना हां जेड़े गुरु दे दर दी सेवा करन वाले हन।
1: महला तीजा।
0: दूजा श्लोक फिर गुरु अमरदास पातशाह ने उचारण कीता है।
1: मन मुख मन अजित है दूजा लगा जाए।
0: गुरमुख ने ते अपने मन नू गुरु दे हवाले कर दिता है ते जेड़ा मन काम करो लोमो हंकार नू अपने अधीन गुरु दे थापड़े दे राही कर लेंदा है। पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोवा ए हो गोसाई दा पहलवानड़ा मैं गुरमिल उच दुमालड़ा सब होई छिंज इकट्ठिया दई बैठा वेखे आप जियो वात वजन टमक भेरिया मन लथे लेंदे फेरिया निहते पंज जवान मैं गुर थापी दिती कंड जियो। पंजे जवान काम करो लोमो हंकार काबू च आ गए जद गुरु ने थापड़ा दिता पर जेड़ा गुरमुख ते मन नूं काबू विच करके मन जीते जग जीत दी अवस्था ते पहुंच जांदा है पर जेड़ा मनमुख है ओदा मन काबू च नहीं रहिंदा ओदे मन ते विकार जित प्राप्त कर लैंदे ने ओ मन नूं काबू नहीं कर पाउंदा मन नहीं जित पाउंदा है ओदी अवस्था है दूजा लगे जाए ओदे मन विच रब दा गुरु दा प्यार नहीं ओदे अंदर माया दा प्यार है। वडियाईयां दुनिया दीयां चंगीयां लगदियां ने ओनू सेवा नहीं चंगी लगती अपनी सेवा करवानी चंगी लगती है ओनू अपना नाम चंगा लगता है रब का नाम नहीं चंगा लगता। महाराज कहिंदे जे को अपनी शोभा लोरे साध संगे होमै शोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी परे जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा नानक ता कह बल बल जासा। यह मनमुख बंदा अपनी वडियाई च फसिया है ओदा मन विकारां दे अधीन है। एक लक्षण होर मनमुख बंदे दा ओदे चेहरे ते नहीं लिखिया मनमुख है पछाण किवें करिए महाराज कहिंदे नाम ना चेतें शब्द ना विचारें ए मनमुख का आचार। दो थावां ते पंक्ति आउंदी इक थां ते अखीर च आचार है इक थां ते विचार भी है। नाम ना चेतें शब्द ना विचारें ना नाम चेते करदे ने ना शब्द नूं विचारदे ने इह किहदे लक्षण ने इह मनमुख का आचार। साहिब कहिंदे उहदा मन विकारां ने जित्तिया है उह विकारां दे वाले पासे ओदे मन ने प्यार पाया है।
1: तिसनो सुख सुपना नहीं दुखे दुख विहाए।
0: काम क्रोध लोमो हंकार विच फसिया बंदा सुपने विच भी सुख नहीं प्राप्त करदा सुपने विच भी ये विकार जेड़े ने उन्हों दुखी करदे हन।
1: घर घर पाड़ पाड़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए।
0: ये मन नू काबू करन वास्ते बड़े बड़े पंडित घर घर पंडित दा मतलब अनेकां पंडित पढ़ के धार्मिक ग्रंथां नू थक गए हन सिद्ध वड्डियां वड्डियां समाधियां ला ला के जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहा वड्डी आर जा फिर हर स्यों फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया ओ जन्म मरण दे गेड़ चो नहीं मुक्त हो सके मन दी भटकना नू काबू नहीं कर सके।
1: एहो मन वस ना आवई थके कर्म कमाए।
0: इस मन नू काबू करन वास्ते बड़े बड़े यतन साधकां ने साधना वालियां ने वरते ने कर्म धर्म पाखंड वरते ने पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगम साधे पंच जना स्यों संग ना छुटके अधिक अहंग बुद्ध बांधे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेकां अनेकां कर्म कीते पर कहिंदे एक कर्म करके थक गए मन वस विच नहीं आया है।
1: भेख तारी भेख कर थके अठ साठ तीरथ नाए।
0: कई प्रकार दे पहरावे भेख धारण कीते ओ भेख कर करके थक गए पर मन नहीं काबू विच आया अठाठ तीर्थां दा इशनान भी मन नूं काबू नहीं कर सकिया।
1: मन की सार न जाननी हौ मैं परम भुलाए।
0: किसी ने भी मन दी कदर नहीं कीती सार नहीं जानी इहदी खबर ना लई कि ए मन कर्मा ए मन धर्मा ए मन पंच तत्त ते जन्म ए मन नूं काबू विच किवें करना है। अचर चरै तां सिद्ध होई सिद्धी ते बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन भीतर तां भ्रम काटिया जाई ਇਹਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਵਧੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਧੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ।
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ।
0: ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਪਵੇ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਤਿਉਂ ਹਰ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਉ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਭਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਖੋਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।
1: ਭੈ ਪਿਆ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ।
0: ਰੱਬੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਚਲੇ ਗਈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮਤ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਭੈ ਪੈ ਮਨ ਵਸ ਹੋਵਾ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
1: ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ।
0: ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਾਤਾ ਸਾਈ ਝੜ ਝੜ ਪਵਦੇ, ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਆਈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ।

नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में 1674 AM रेडियो हांजी पर। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मित्रों, जिसको आप चाहते हैं उसके साथ अपना संबंध जोड़ना चाहोगे, अब आपका और हमारा साथ ही देख लीजिए। रेडियो हांजी कईयों के लिए रात की ड्राइव का साथ है, तो किसी के लिए मॉर्निंग शिफ्ट से वापसी के लिए हम सफर। और मैं आपका दास, जो आप तक भक्ति और धर्म, अध्यात्म और जीवन की प्रेरणा देने वाली दिव्य कथाओं को आप तक लाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। अब आपको मेरे प्रयास से कितना ज्ञान मिलता है, कितना आप अपने देश के, अपने गली मोहल्ले के, शहर के मंदिरों से, भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं, उसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकता। भाई, लगाऊं भी कैसे? आपके साथ मेरे संबंध भी कहां बने हैं? अभी तो ये रिश्ता शुरू हुआ है। कोई मुझे अपना दोस्त मान सकता है, कोई भाई, तो कोई अपना आध्यात्मिक सेवक, किंतु इनमें से कोई ना कोई रिश्ता जो आज से आपको बनाना पड़ेगा, तभी आनंद आएगा आपको भी और मुझे भी। इसके लिए करना क्या है आपको? रेडियो हांजी के व्हाट्सएप पर लिखिए जो आपके मन की फीलिंग है इस शो पुण्य दर्शन के बारे में, मेरे बारे में, यानी आपके दास के बारे में। वो बात अच्छी हो, बुरी हो, किंतु लिखिए जरूर, क्योंकि मैं ये रिश्ता एक तरफा नहीं बनाना चाहता। और जिसका मैसेज मेरे दिल को छू गया, तो उसका नाम पुण्य दर्शन का हिस्सा जरूर बनने वाला है। ये वायदा है मेरा। तो चलिए, आज की अपनी ड्यूटी आरंभ करता हूं लेकर बजरंग बली का नाम। आज मंगलवार का पावन दिन है। आपके और मेरे रिश्ते की बात चली है तो श्री हनुमान जी को समर्पित भक्त का अपने प्रभु के साथ, अपने भगवान के साथ रिश्ता कैसा होता है, यह जानते हैं भक्त शिरोमणि राम भक्त श्री हनुमान जी के पुण्य दर्शन के माध्यम से, इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। वैसे देखा जाए तो सभी दिन भगवान के बनाए हुए हैं, किंतु भक्तों के प्रेम के चलते सभी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार दिनों को निश्चित किया हुआ है। जैसे आज मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। मंदिरों में भक्त बजरंग बली के दर्शन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सिंदूर अर्पित करते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की ये परंपरा कैसे शुरू हुई? भक्तों के बीच प्रचलित एक प्यारी सी कथा है। रावण वध के बाद, लंका विजय के बाद श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण अयोध्या लौट आए, संग हनुमान भी आए। एक दिन श्री हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा। अब बाल सुलभ सरलता से उन्होंने पूछा, माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो? माता सीता ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, वत्स, यह सिंदूर मैं अपने स्वामी श्री राम की लंबी आयु और उनके मंगल के लिए लगाती हूं। यह सिंदूर श्री राम और मेरे संबंध की निशानी है। हर सुहागन अपने पति के लिए अपनी मांग में हर पल इसे धारण करती है और उनके लंबी आयु के लिए कामना करती है। यह सुनते ही हनुमान जी के मन में विचार आया और वहां से ये सोचते हुए निकल गए कि बड़ा अद्भुत श्रृंगार है, थोड़ा सा सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु श्री राम का कल्याण होता है। आगे हनुमान जी ने ऐसा क्या किया जो आज भी एक परंपरा, एक नियम बन गया है, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दास। तो माता सीता को श्री राम जी के नाम का सिंदूर मांग में भरता देख हमारे हनुमान जी ने प्रश्न किया और उत्तर जानकर उन्होंने सोचा मेरे श्री राम का संबंध मेरे साथ तो भी है। अगर माता सीता अपने सुहाग के लिए थोड़ा सा सिंदूर लगाकर श्री राम जी के साथ अपने संबंध को दर्शाती है और उनकी मंगल की कामना करती है तो क्यों ना मैं अपने शरीर पर सिंदूर लगा लूं, जिससे प्रभु का और भी कितना मंगल हो। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया और श्री राम दरबार में पहुंच गए। जब भगवान श्री राम ने उन्हें इस रूप में देखा तो मुस्कुराते हुए इसका कारण पूछा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु यदि सीता माता के थोड़े से सिंदूर से आपका कल्याण होता है और वो आपके और माता के रिश्ते की संबंध की निशानी बनता है तो मैंने आपके प्रति अपने प्रेम और सेवा भाव से पूरा शरीर ही सिंदूर से ढक लिया। बोलो बजरंग बली की जय, ताकि आपका मंगल अनंत गुना बढ़ जाए। हनुमान जी की निष्कपट भक्ति और प्रेम देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी और उस पर मेरी विशेष कृपा भी बनी रहेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि सच्चा प्रेम, समर्पण और निष्काम सेवा सबसे अधिक प्रिय है। हनुमान जी की भक्ति में ना कोई स्वार्थ था, ना कोई अहंकार था, केवल अपने प्रभु श्री राम का सेवक बनकर उनका नाम स्मरण करते रहो और उनकी सेवा करते रहो। उनका एक ही उद्देश्य है, अपने प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना। यही कारण है कि उन्हें भक्तों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और वो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। वे आज भी अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। यदि आप भी मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सुबह उठिए, स्नान कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित कीजिए। अगर मंदिर नहीं है तो हर बार की तरह इस बार भी कहूंगा, अपने मन को मंदिर बनाइए, क्योंकि मन में हमारे ईश्वर, हमारे भगवान परमात्मा रूप में विराजमान हैं। श्रद्धा से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, कम से कम श्री राम, जय जय राम या हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे का जप करें। सच्चे मन से की गई भक्ति जीवन में साहस, आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा का अनुभव कराती है। इस पर कीजिए विचार। और हाँ, याद है ना, आपके और मेरे संबंध मजबूत बनाने के लिए मुझे मैसेज जरूर कीजिए, मैं इंतजार करूंगा। नंबर आप सभी जानते ही हैं। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे श्री हनुमान जी की एक और अद्भुत कथा के लिए और आध्यात्मिक संदेश के साथ, हनुमान जी की एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक राम नाम जपिए और काम पर चलिए। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली। मुझे दीजिए आज्ञा,
मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: डकैत तो साढ़े सारे दे अंदर होता है, मौका मिलता है जो हाथ लगता है वो लुट लेता है।
4: सिर्फ फिल्म ही नहीं, ये है पंजाब की सब तो बड़ी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
3: जदों ये जोकर तख्त ते बैंदा तां वो राजा नहीं बनता, वो पूरे राज नूं सर्कस बना लैंदा।
4: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार, 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: टेंशन मेरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.in।
1: याद रखो 9077-9733
2: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तो आड़े ना।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042। ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
3: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुण इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
4: हुण टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुण सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए कित्थों?
4: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
5: मेरे नाल ता कुछ खेड़दा ही नहीं, सब खोल दी लंग जांदे ने।
6: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोज पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी। कणकां दे ओले
7: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी।
6: स्टारिंग गुरप्रीत घुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
8: हुण दस्सो मैनू कणकां दे ओले कौन।
6: रिलीजिंग ऑन 31 जुलाई।

या मिडवाइफ्स की कमी नहीं है, बल्कि जीपी से भी परी भारी कमी है, और जो कि आने वाले समय च होर भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। खेतरी इलाकों च रूरल ते रीजनल आस्ट्रेलिया दे विच ये होर भी ज्यादा भारी मार करेगी। उदाहरण के तौर उत्ते जिहड़ा हैल्थ वर्क फोर्स माइग्रेशन नाम की एक एजेंसी है, उन्होंने एक आंकड़े जारी किए ने, जिस दे विच दस्या है कि आस्ट्रेलिया के अंदर सब तो ज्यादा नर्सिस जिहड़े आते ने वह भारत तो आते ने। 17,872 नर्सिस ने, यह 2024 के आंकड़े ने, और दूजे नंबर के उत्ते भारत तो बाद इंग्लैंड आता है जिथों 13,200 ते फिलीपींस 13,300 के करीब नर्सिस इथों आदियां ने। इस तों इलावा न्यूजीलैंड 7,000 नर्सां दीआं लोड़ां दी पूर्ति जिहड़ी आस्ट्रेलिया दे लई कर रहे हैं, ते चीन तों 1400, आयरलैंड तों 2600, कैनेडा तों 600, अमरीका तों 619, इस तरीके दे नाल नर्सिस आस्ट्रेलिया दे विच पूरियां जिहड़े माइग्रेट होके आंदे ने उह इत्थे कम करदे ने। डॉक्टर्स दी जदों गल आंदी है तां आस्ट्रेलिया च सब तों वधेरे डॉक्टर यूके तों ने, 7,304 डॉक्टर जिहड़े उह प्रवास करके यूके दे विचो आस्ट्रेलिया आए, ते 6,000 डॉक्टर जिहड़े भारत दे विचो प्रवास करके आस्ट्रेलिया आए। इसे तरीके दे नाल न्यूजीलैंड चो 2200, बांग्लादेश चो 1200, साउथ अफ्रीका चो 1800, ते पाकिस्तान चो 1700 डॉक्टर जिहड़े माइग्रेट करके आस्ट्रेलिया आए। हालांकि इंग्लैंड, अमरीका, कैनेडा वर्गे मुल्कां दे विच जिहड़े डॉक्टर्स ने या जिहड़ा जीपी स्टाफ है वह इन्ना ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि इन्हां देशां दे विच अपना भी जिहड़ा सिस्टम है वो इस वक्त गड़बड़ाया होया दसिया जा रहा है। केरला की गल जदों तुरी हो है तो अगली खबर भी केरला दे नाल जुड़ी हुई हो सकता है कि तुहानू ये लगे कि यह आस्ट्रेलिया दीआं खबरां दा सैगमेंट है या केरला दा, पर एंटी रेसिजम कैंपेनर्स की तरफ तो आस्ट्रेलिया दीआं दो जिहड़ियां सिनेमा चेन्स ने, हॉइट्स ते विलेज सिनेमा, इन्हां दे खिलाफ एक एंटी मुस्लिम प्रोपेगंडा फिल्म खास तौर दे उत्ते भारत दी केरला स्टोरी नू चलान दा जिहड़ा एक मामला दर्ज किया गया। दस दईए कि अलायंस अगेंस्ट इस्लामोफोबिया नाम दे इस अदारे दी तरफ तों विक्टोरियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी वीकैड दे विच सोमवार दे दिन इस मामले नू लजाया गया, जिथे दस्या गया कि साल 2023 दे विच जदों इह फिल्म विक्टोरिया ते दूसरे जिहड़े सूबे ने उत्थे इह दिखाई गई सी। ये फिल्म ठीक उसे तरीके की फिल्म है जदों 1930 के दहाके दे विच नाजी प्रोपेगंडा फिल्म आई सी, जिस दे विच यहूदियां नू छोटे बच्चियां दे लहू पींदे हुए दिखाया गया सी। ठीक उसे तरीके दे नाल एक प्रोपेगंडा नू प्रायोजित तरीके दे नाल आस्ट्रेलिया दे विच लियांदा गया। अदालत दे विच वीकेंड दे अंदर ये गल ये इल्जाम भी लगाए गए कि इस दे विच मुस्लिम मर्दां नू गैर मुस्लिम महिलावां नू बहला फुसला के उन्हां दे नाल ब्याह करके उन्हां नू उन्हां दा धर्म परिवर्तन करवाण दी जिहड़ी इक फैक्ट सांझे किते गए ने। वैसे इह फैक्ट नहीं ने, क्योंकि भारत दी अदालत दी तरफ तों फिल्म मेकरस नू शुरुआत दे विच इक 30 सैकंड दा डिस्कलेमर लगाण दी गल कही गई सी, पर फिल्म मेकरस ने एडा वड्डा डिस्कलेमर पा दित्ता कि उस नू 30 सैकंड दे विच पढ़िया जाना मुश्किल हो गया। बल्कि उह डिस्कलेमर होर भी ज्यादा गैर प्रभावी हो जांदा है जदों फिल्म दे अखीर दे विच डॉक्यूमेंट्री स्टाइल दे विच कुछ लिखिया होया आंदा है, जो कि फिल्म दी जिहड़ी नकारात्मकता है उस नू सार्थकता दे विच बदल दिंदा है। अजिहे दे विच इह वी कहा गया है कि इह इक किस्म दी प्रोपेगंडा फिल्म है, जबकि हॉइट्स विलेज सिनेमा की तरफ तो वीकेंड दे विच ये गल कही गई है कि मुस्लिम भाईचारे दे इतराज उन्हां नू जिथे जिथे हासिल होए उत्थों उन्होंने यह फिल्म हटा दिती, पर विलेज सिनेमा ने इस दी वैरेबी दे विचों स्क्रीनिंग उसे दिन हटा दिती सी। बाकी सिनेमाज दे नाल जुड़ी हुई उन्होंने यह स्क्रीनिंग इस करके जारी रखी क्योंकि इस फिल्म दी लेके जिहड़ी क्लासीफिकेशन है वो क्लासीफिकेशन जारी करन वाला जिहड़ा बोर्ड है उन्होंने MA15 रेटिंग दे के इस फिल्म नू चलान बारे कह दिता सी। MA15 भी इस करके दिती सी क्योंकि फिल्म दे विच इक महिला दा जिहड़ा गैंगरेप हुंदा दिखाया गया सी। ते इस मामले दे विच जिहड़ी हाल फिलहाल अगले 2-3 दिन तक इस मामले दी सुनवाई जिहड़ी चलनी है वीकेंड दे विच आम लोकां दे विचार भी इस दे विच लए जाणगे। वेस्टर्न आस्ट्रेलिया दे नाल जुड़ी हुई खबर जिथे यंग फिली नाम दा एक रैपर हाले भी वेस्टर्न आस्ट्रेलिया दी जेलां दे विच ही बंद रहेगा। असल नाम एंड्रेज फेलिपी वेलेंशिया
30 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੈਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 2024 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਟ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੇ ਬਾਰਵਨ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਥ ਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਸਬਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਬੈਠਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੌਂਡਾਈ ਦੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: टेंशन मेरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
3: एक अजिही दुनिया जिथे जिराफ हुण सब तो उच्चे जानवर नहीं है। ज़ूज़ विक्टोरिया मान नाल चिड़िया घर विच डायनासोर नूं पेश करदा है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच। 3 चिड़िया घरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोर दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार होवो। मेलबर्न चिड़िया घर, वेरी बी ओपन रेंज चिड़िया घर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलखण बाहरी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नूं जिउंदे जागदे वेखो। चिड़ियाघर विखे डायनासोर्स सिर्फ सीमित समय लई हन। आज ही अपनी मुहिम दी योजना बनाओ।
0: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042। ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
5: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
6: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
5: फिर लवाइए किथों?
6: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
7: मेरे नाल ता कुछ खेड़ता ही नहीं, सब खोल दी लंग जांदे ने।
8: वादवा प्रोडक्शंस अते पैनोरमा स्टूडियोज पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी, कणकां दे ओले।
9: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी।
8: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
10: हुण दसो मैनू कणकां दे ओले कौन।
8: रिलीजिंग ऑन 31st July।
10: दसो।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford!
11: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.

0: कि तुसी अपने घर दे उपकरणां नूं बिजली नाल चलाउण बारे सोच रहे हो। ए तुहाडे सोचण नालों कितें आसान है। ईजी इलैक्ट्रिक एसीसी तुहानूं छोटां ते बचतां दा हिसाब लगाउण, उपकरणां दी तुलना करन अते भरोसेयोग ट्रेडीज़ नूं इक्को थां ते लब्भण च मदद करदा है। तुसी बिजली दे बिलां ते $2,000 तों वी वध दी सालाना बचत कर सकदे हो। कि तुसी शुरू करन लई तैयार हो, ईजी इलैक्ट्रिक SEC.com.au ते जाओ। बिजली बिलां ते बचत करना है बहुत आसान, SEC दे नाल। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न वालों चार।
1: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 04 double 3-280-252